और जिस दिन आसमान अब्र से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया, और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफी है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव सही नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: इट्स

0: पूरी ताकत सां निशानो बणाए रहिया आहियूं। ईरानी सरज़मीन जे इंच इंच जी दिफ़ा कंदासीं। ईरान जो अमेरिकी सदर ते रदे अमल मसूद पज़िक्शान जो चवण आहे त ईरान खे तक़सीम करण जूं कोशिशूं कंदड़ ॿुधाइनि त जंग में उन्हनि खे छा हासिल थियो आहे। ट्रम्प ॿुधी छॾे अमेरिकी जारियत जो ताक़त सां जवाब ॾींदासीं, हर क़ीमत ते वतन जी हिफ़ाज़त कंदासीं। अमेरिका जा चौथे ॾींहं बि ईरान ते हमला जारी। हंगाम, बम्बोर, बंदरगाह, अब्बास, केश कशम, हरमुज़ागान, सीरक ऐं हाजी आबाद धमाकनि सां गूंजी उथिया। अमेरिकी फ़ौज जो चवण आहे त विच ओभर में 20 खां वधीक जंगी जहाज़नि समेत केतिरा ई जहाज जंगी मिशन में हिसो वठी रहिया आहिनि। ईरान जे बंदरगाहनि ऐं सामूंडी इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ जहाज़नि जी ॿीहर नाकाबंदी कई वई आहे। ईरान जा अमेरिकी अॾनि ते हमला जारी। बहरीन ऐं कुवैत में हथियारनि जे ज़खीरनि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब जो चवण आहे त कुवैत जे अली सालवेयर बेस खे निशानो बणायो वियो। अर्धनि जे अॾे ते अमेरिकी थाकनि खे ड्रोन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत। ख़िते जे अमुन ऐं इस्तेकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमिल तौर ते एकीअ जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जे सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारीअ ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां ख़िते जो अमुन ऐं इस्तेकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान ख़िते जे अमुन सलामती ऐं इस्तेकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरो। तुर्किया सदर रजब तैयब अर्दगान, तुर्किया जे दिफ़ा वारो वज़ीर ऐं तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह सां धारदार मुलाक़ातूं। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुचण ते खेस गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। ISPR मौजूद मुलाक़ातनि दौरान गडि॒यल दिलचस्पी वारो मामलनि, इलाक़ाई सलामती ऐं दिफ़ाई सहकार ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। तब्दील थींदड़ जाग्राफ़ी ऐं सियासी माहौल ते बि ॻाल्हियूं। स्ट्रीट जक भाईवारी वधीक मज़बूत बणाइण वारो अज़म बि वरजायो वियो। आज़ाद कश्मीर जे चूंडनि जो बायकाट कंदासीं। सियासी जमायतनि जे अमल जी मज़म्मत कयां थो। तारीख़ असांखे सबक़ सेखारियो आहे त इंतिहा पसंद रवैयनि सां हक़ हासिल नाहिनि थींदा। निज़ाम में रही हक़ हासिल करणा पवंदा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारीअ जो आज़ाद कश्मीर में पार्टी उहिदेदारनि ऐं टिकट होल्डरनि जे इजलास खे ख़िताब। संदसि चवण हो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल रही आहे। सियासी धुरियुनि खे सोचणो पवंदो त असां नौजवाननि जे उमीदनि ते कीअं पूरो लही सघूं था। नौजवाननि जूं उमीदूं पूरियूं न थींदियूं त फसादी कुवतूं फ़ाइदो वठंदियूं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज कंदड़नि जा 100 सैकड़ो मुतालबा पूरा कया आहिनि। तव्हां 30 ॾींहं एहतजाज कयो, एहतजाज हमेशह लाइ नाहे हूंदो। हाणे एहतजाज ख़तम कयो। मां आज़ाद कश्मीर में MQM ऐं बानी MQM वारी सियासत नथो चाहियां। चूंडनि ताईं मां आज़ाद कश्मीर में ई रहंदसि। बिलावल भुटो ज़रदारीअ खे JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जूं फोन ते अॻवाणनि सां गॾियल हिकमत अमलीअ ते इतफ़ाक़। बलूचिस्तान में ख़ारिजीनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन शहबान जारी। वधीक 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियलनि जो अंगु वधी 85 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाईनि दौरान दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए वधीक 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। पाक फ़ौज, FC ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन दौरान हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाईनि ज़रिए ख़ारिजीनि खे निशानी बणायो पियो वञे। ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर 123 ख़ारिजी मारिजी चुका आहिनि। कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो बि एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस आफ़िसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़िया लंजार चयो आहे त रेंजर्स कैंप ते 4 दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी हमले जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जानान अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़ग़ानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। 13 सहूलतकार मुलविस हुया। रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर डोह जो बि एतराफ़ कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी डुख्यो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज़ हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। व इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और जब खूबसूरत कर दिखाए थे उनके लिए शैतान ने उनके आमाल। कौन से आमाल? यही जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो अबू जहल की जबान से निकल रहे थे, जिनका तस्किरा अबू जहल की जबान से हुआ। वकाल ला गालिब लकुम अल्यौम मिनन्नास, और उसने कहा आज तो लोगों में से तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुम तो तादाद में इतने हो, तुम्हारे तुम्हें कोई भी हरा लकुम और हूं। इसके बारे में आता है कि मुशरिकीन जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले बनी बकर बिन किनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान न पहुंचाए।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो ले।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर तलब कीजिए.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क.
6: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज.

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम
0: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी
3: जी ए एम।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू
5: सभी कलाबी
6: GAFM।
7: मंतकल
8: खिपरो भरसा नारा केनाल में बुडी वयल औरत जो लाश हथ गोठ मारवी वटा नारा केनाल में पेरी वयल आई जो लाश कलाकन का पोए हथ आयो
7: फाइनल में पहुती आहे। इवन जो बियो सेमीफाइनल अर्जेंटीना इंग्लैंड जी में थींदो। फते फाइनल में स्पेन सां वाहिद वट कईंदी।
9: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
10: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
11: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम।
10: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
11: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
10: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
11: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
10: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
11: गर्दन और कंधों के दर्द
10: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
11: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
10: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
11: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: संगीत जो आवाज, संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM
1: 94.6। चाहे फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहे फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इन टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सुर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हैव यू, कैसे हैं आप? आई हो चुके जी जहां जहां भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप सेट, कूल एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम। आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक।

0: बाकी जी वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट इल द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं
1: बन जाते हैं, ये माना
0: लाइफ में अच्छा बड़ा कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विच यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और चौबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर आगे ले जी आया, बिस्मिल्लाह बाजौर शाही हाउ एंड

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम सब मिलके करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस पहले गाने के साथ ही हम चलेंगे आगे और आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड.

खवातीन और नाजरीन, सबात पार्टन और रैपस्टार आपको वाइब्स की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको खेल खेल के गिरने पर मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट पर बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान के

सकते हैं तीन तरीके कार्ड से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज आपको मिल जाता है, फेसबुक के ऊपर GAFM88 के नाम से. उस पेज के ऊपर आने के बाद आपको पोस्ट मिलती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कर पाएंगे 03000113488 इसके ऊपर. और कॉल करने के बाद हमारे दो सेगमेंट जिसमें आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाता है, और वो लोग जो कि सुर लगाओ गाना सुनाओ में हमें कॉल करेंगे, वो अपने गाने चेंज करके आए. अगर आपने फिर से पुराने वाले गाने सुनाए या रोने धोने वाले गाने सुनाए तो मैं वो बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगी, ठीक है. तो ये होगा, और ये आपने सोच के कॉल पे आना है, और हम एक और गाना प्ले करेंगे, और गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने. वो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलतों ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
2: सखर शिकारपुर रोड ते,
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू,
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
3: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो।
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
3: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा,
2: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐं 600 गज।
3: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलतूं,
2: साफ मिठो पाणी,
3: बिजली, गैस,
2: 24 कलाक सिक्योरिटी,
3: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभु खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे
2: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
3: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
2: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
3: कॉन्टेक्ट
2: 03009317252
3: एंड 03132757860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
2: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
4: यार मां छा कयां, किथे वञां, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां, शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
2: छो भला, छा थियो आहे तोखे, साफ साफ ॿुधा मसलो छा आहे।
4: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां, मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे, न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
2: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिक ई मसलो आहे।
4: हिकु? इहो कीअं?
2: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे, छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
4: त पोइ मां छा कयां?
2: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। ही कुदरती जुज़न मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
4: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
2: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
3: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
3: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
3: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
3: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
3: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आर

0: का लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: रब्ते के लिए
1: 03262200440।
2: जीए सखर FM 88
3: सखर की आवाज़।

0: खैर हुआ जब इस हाथ में वो आग बैठे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बैठे, इम्तिहान के सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ू जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा, रैप मेरी जान मैं कराची के लिए जान दे रहा, ये लड़के लिखते मुझे
1: जी। नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
2: आपसे पहले जाचल लाडकाना से बात कर रहा हूँ, आपका प्यारा सा शो सुन रहा हूँ, मुझे सॉन्ग सुनाओ दीबा सर का।
1: पहले
2: सुंदर से खबर आ प्यारा मारो है,
1: गा के सुनाए ना, शो का सेगमेंट कर
2: रही है। सुंदर से खबर आसा प्यारा मारो,
1: किसका गाना है ये वैसे? इतना सा गाएंगे बस?
2: दीदा सर का सॉन्ग है।
1: दीदार
2: दीबा सर,
1: दीबा सहर का सॉन्ग है। ओके मैं
2: मेरा दोस्त
1: लेती हूँ। ओके
2: पापा अब्दुल भाई जतई वासुफ अली बुक की जो भी सुना हो आप उनको सलाम, आप फैसला शो नहीं करती हूँ मैं।
1: बेस्ट लुक का शो
2: नहीं चल रहा,
1: चलता ही नहीं है तो करूंगी कैसे, मतलब करूंगी ही नहीं तो चलेगा कैसे?
2: प्रोग्राम करो ना आपका, आपकी आवाज बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: चले इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ हम प्ले कर रहे हैं नेक्स्ट सॉन्ग।
0: करे क्यों जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ।
1: इसी के साथ हम ब्रेक पे भी जाएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: एटीएट
1: सखर की आवाज
0: जिंदगी गुजारी
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है ये तो देखो एक और नया सूट ये कैसे

0: आओगी जी. वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और सेगमेंट हमारा सर लगाओ गाना सुनाओ. नेक्स्ट कॉलर हेलो.
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जामसरा से अमंगला सोलंकी आपके साथ हूँ. अभी
0: पहली दफा कॉल कर रहे
1: हैं.
0: सॉरी
1: शहर जामचौरों से अमंगला सोलंकी.
0: नहीं वो तो बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ पहली दफा कॉल लगी है. पहली दफा बात कर रहे हैं.
1: हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद मैं कॉल लगी अभी.
0: चलें जबरदस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अच्छा सा गाना सुना दें.
1: हाँ सॉन्ग सुनाऊंगा एक और आपका शो सुना. इतनी खुशी है क्या बता दूँ.
0: बस गाना सुना दें अच्छा सा ताकि वो हम प्ले कर दें.

0: कसम तुम मेरी हो अभी, तुम मेरी हो आज।
1: ओके थैंक यू सो मच भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये थे कॉलर और गाना हम प्ले करेंगे और ये रहा गाना, सुनेंगे आगे चलेंगे इसी के साथ।

0: ओके जी, इतना डरा क्यों रही है? कर लेते खूब. इतना डरा के क्यों कह रही है? अच्छा ओके, ये गाना हम प्ले कर रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना है?
1: बस आपको दीजिए. अच्छा.

आवाज चली गई है और जैसे सरदर्द की आवाज कम थी वैसे इस गाने की भी कम है. इसलिए हम बेस बढ़ाएंगे 03000113488. और अगला हमारा सेगमेंट 12 बजे के बाद जो कि होगा हरा भरा पाकिस्तान और उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे एक अदद गेस्ट लाइनअप. सो गाने के साथ छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक दोनों के बाद वापस आते हैं. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शहर चाबहार जासक कनारक अबू मूसा अमरीकी सेंटकॉम जो चवण हो तो हमला करे ईरान के दिफाई निजाम ड्रोन ए मिसाइल थाकन तोड़े बहरी सलाहतन के निशानो बनाए वो ईरानी फौज भी बहरीन ए उर्दन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका के अल जफीर वाले अड्डे के निशानो बनाया वो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां सऊदी अरब से हमलन की मज़ा

0: योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं हरा भरा पाकिस्तान सेगमेंट और वापस आ चुके हैं हम. ट्रांसमिशन जिंदगी गुलजार है जिसमें हम 12 बजे के बाद सेगमेंट कर रहे होते हैं हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और ये सेगमेंट हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से आप तक पहुंचाया जा रहा होता है. और इस सेगमेंट में डिफरेंट गेस्ट हमारे साथ लाइनअप होते हैं जिनसे हम बात करते हैं ट्री प्लांटेशन पे, फ्लड्स पे, हीट वेव्स पे, फूड सिक्योरिटी पे और डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स के ऊपर. तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं फराज, इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. इनको कहेंगे खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी डॉक्टर सरदार सरफराज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: जी, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: सबसे पहले आपको बहुत सारा खुश आमदीद. आप पहली बार जी एफ एम रेडियो नेटवर्क पे इस वक्त हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं हरा भरा पाकिस्तान, सो मोस्ट वेलकम टू यू.
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह.
0: ओके जी, आज हम बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है जी एक्सट्रीम वेदर के ऊपर. और इस बारे में सबसे पहले तो डॉक्टर सरदार सरफराज, आप हमें ये बताइएगा कि अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की, तो सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीली आखिर है क्या और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है.
1: जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में लिया मुझे. तो देखिए, मौसमियाती तब्दीली बुनियादी तौर पर दो बड़े जो वैसे तो वेदर पैरामीटर या मौसम के जो समझते हैं पैमाने होते हैं वो मुख्तलिफ हैं. उसमें बारिश का होना, उसमें टेम्परेचर का बढ़ना, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवाओं का ज्यादा होना कम होना, ये सारे वेदर पैरामीटर्स होते हैं ना. लेकिन उसमें प्रिंसिपल वेदर पैरामीटर्स दो होते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, दर्जा हरारत और बारिशें. तो आपको पता है कि दुनिया भर का दर्जा हरारत जब से सनती इनकलाब आया है तो उसके बाद बढ़ गया है. यानी अब कहीं पर 1.3 डिग्री कबल सनती इनकलाब के वक्त से जब आप इसको कंपेयर करते हैं आज के दर्जा हरारत को, तो आलमी तौर पर कहीं पर 1.3, कहीं पर 1.4 उस जमाने के दर्जा हरारत से बढ़ चुका है. तो ये काफी ज्यादा और मुसलसल बढ़ता जा रहा है आगे. उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो जब से सनती इनकलाब आया है तो आपने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में और पावर जनरेशन में, इन तीनों चीजों में गैसेस का इस्तेमाल, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल और इस तरह से कोयले का इस्तेमाल, ये बुनियादी असबाब है इसमें. और फिर लैंड यूज चेंज होती है, जैसे जमीन की साख्त आप तब्दील करते हैं, आबादी बढ़ती जा रही है तो दरख्तों का कटाव करके आप शहर बसा रहे हैं नए नए, और ये भी एक फैक्टर है. तो इस तरह से हमें बड़ा कंट्रीब्यूशन, वही मैंने जैसे कहा कि फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयले से बिजली बनाना, इन तीनों चीजों के ऊपर आपकी संतें चलना और इन तीनों चीजों पे आपकी ट्रांसपोर्ट का इनसार, ये सबसे ज्यादा एक तरह से वो या इसका अमल दखल है आबो हवा को या माहौलियात को खराब करने में. तो ये बुनियादी असबाब है क्लाइमेट चेंज को कहते हैं कि यानी जो प्रिंसिपल पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने टेम्परेचर का आपको बताया कि इतना बढ़ चुका है कबल सनती इनकलाब के मुकाबले में. और आगे की प्रोजेक्शन ये है कि अगर आपने फॉसिल फ्यूल और इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं इनका तदारक अगर ना किया आपने, अल्टरनेट एनर्जी पे ना गए और इसकी कोई मिटिगेशन या एडाप्टेशन क्लाइमेट चेंज के लिए ना की, तो इस सदी के वस्त तक ये 2 डिग्री तक बढ़ सकता है. जो कि आपको याद होगा कि पेरिस एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट मशहूर उस नाम से है, 2015 में, तो उसमें यही बात तय की गई थी कि दुनिया में जितनी तवानाई पैदा करने के जराए हैं, ट्रांसपोर्ट है और इस तरह से आपकी इंडस्ट्री है, उसमें आप फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल कम से कम करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज आउट करें, यानी इसको बिल्कुल अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं और इसको निकाल दें अपनी उसमें रोजाना की उसमें से, कामों में से, तो आप बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रोक सकते हैं. तो अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे आपने नाम लिया कि बहुत शिद्दत के मौसम आपको उनका सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि गुज़श्ता 30 सालों का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा में भी और दुनिया भर के डेटा में भी यही है कि इन पिछले 30-35 सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और उनकी सिवेरिटी भी बढ़ गई है. यानी वो ज्यादा तवातर से आने लगे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज्यादा शिद्दत से आने लगे हैं पिछले 25-30-35 सालों में. उसकी वजह यही दर्जा हरारत का बढ़ना है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से سات سے دس فیصد زیادہ موائسچر انڈکٹ ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر میں, اور ظاہر ہے کہ جب زیادہ موائسچر انڈکٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ موائسچر اویلیبلٹی ہوتی ہے ایٹماسفیئر میں, تو زیادہ شدت کی بارشیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے شہروں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی پچھلے سال بھی ہوا تھا, سوات کے علاقے میں ادھر, اور اسی طرح سے کاغان نران کی طرف.

0: पर मतलब ये कि पहले 10-15 मुझे एक फिगर याद आ रही है कि पिछले 30 सालों में या 20 सालों में या 30 सालों में पाकिस्तान मतलब पहले 15 नंबर पे ही फाल करता है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना है। देखिए इसी तरह के इवेंट्स दूसरे ममालिक में भी आते हैं, अमरीका में देखिए आप कितने बड़े बड़े हरिकेन आते हैं उनकी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से, लेकिन उन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा है, उनकी एक तरह से वो उन चीजों का सहार जाते हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, और दूसरा ये कि वल्नरेबल हम ज्यादा हैं, यानी हम जद पजीर ज्यादा हैं। हमारी जो अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, तो हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम तो जैसा तैसा है, लेकिन ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस चीज को नहीं सहार सकता और आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप शुमाली इलाकों में देखिए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो ब्लाफ इवेंट्स होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी ग्लेशियर्स के मुसलसल दर्जा हरारत के बढ़ने से ग्लेशियर्स का पिघलना और फिर एक झील का बन जाना और फिर दर्जा हरारत मजीद बढ़ता है या ऊपर से बारिश होती है तो वो झील फट जाती है, और डाउन स्ट्रीम जितनी आबादियां होती हैं, जितनी अमलाक, जितने इंसानी जाने वो सारी जाया होती है नुकसान आते। अब अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और वो एक तरह से आपके उतने नुकसान ना हो, नुकसान आप बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम हो सकते हैं जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और आपकी वल्नरेबिलिटी कम हो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और वल्नरेबिलिटी सही नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में ये होता है कि उसके चार बड़े मेन पिलर्स होते हैं। एक ये कि कोई नेचुरल हैजर्ड है, बुनियादी तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक डिजास्टर, कि नेचुरली डिजास्टर कोई चीज नहीं होती, नेचुरली हैजर्ड होते हैं, लेकिन वो हमारा रवैया इंसानों का कि जो हैजर्ड को डिजास्टर में तब्दील कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हैजर्ड्स को अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका अच्छा हो, आप किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो डिजास्टर में तब्दील ना हो। ये है बुनियादी तौर पे। मतलब हम जो ज्यादा मुतासर होते हैं तो इस वजह से होते हैं कि हम एक्सपोज ज्यादा हैं नेचुरल हैजर्ड से, या वो जो उसको डिजास्टर में जाहिर है कि हमारा एक्सपोजर बना देता है, कन्वर्ट कर देता है, और इसी तरह से वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है।
1: ओके जी, अच्छा अगर बात की जाए, देखा जाए तो आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप हमें ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली में एग्जैक्ट फर्क क्या है?
0: देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने आपको बताया ना कि टेम्परेचर बढ़ना, यानी दर्जा हरारत फॉर एग्जाम्पल कोई 14 डिग्री के आसपास था, दुनिया पूरी दुनिया का दर्जा हरारत है उसको अगर आप औसत बनाएं, एवरेज करें उसको, तो 14 पॉइंट समथिंग हुआ करता था या 13 पॉइंट समथिंग था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो शायद थोड़ी सी आगे पीछे हो, लेकिन 1850 और 1900 के दरमियान का जो जमाना है उसे हम कहते हैं सनती इनकलाब से कबल का जमाना। तो उस जमाने से आज के टेम्परेचर को जब कंपेयर किया जाता है तो 1.3 डिग्री 1.4 डिग्री जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है टेम्परेचर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, तो कि पहले के मुकाबले में आलमी दर्जा हरारत बढ़ चुका है, शिद्दत है उसमें। तो उसी की वजह से क्लाइमेट आपकी चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज के दो, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल जो पैरामीटर्स हैं, यानी दर्जा हरारत का बढ़ना और दूसरी तरफ आपका रेनफॉल पैटर्न जो है ना वो इरेटिक हो गया है, यानी किसी साल बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं और किसी साल बिल्कुल नहीं होती, और कहीं किसी जगह पर जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे महीने की बारिश एक घंटे में पड़ जाती है, गिर जाती इतना इतनी आलमी हिद्दत बढ़ने की वजह से, और कभी कभी खुशकसाली होती है तो 6-6 महीने 8-8 महीने बारिश ही नहीं होती, और ये एक तरह से अन ईवन सा हो गया पैटर्न ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ही बुनियादी सबब है क्लाइमेट चेंज के पीछे, क्लाइमेट जो आपकी चेंज हुई है उसके पीछे। दूसरी भी वजूहत

0: मालिक नहीं होते ना, कार फ्री डे वो किया जाता है कि जी हफ्ते में दो हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि जब लोग अपनी कारें बाहर नहीं निकालते, तो जितनी आप ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं उतना आप ज्यादा, इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, क्लाइमेट को चेंज करने में यानी ग्लोबल वार्मिंग में आप हिस्सा डाल रहे हैं। तो हर आदमी जो है, हर इंडिविजुअल एक कोशिश कर सकता है कि आप कम से कम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी इमीडिएट करने का काम। तो ये आप पुराने जमाने में हमारे बचपन के वक्त में होता था कि कपड़ों के थैले होते थे, वो हम सोलर सेल्फ लेने के लिए बाजार ले जाते थे और लेके आ जाते थे उसमें। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और कचरा ना फैलाएं, कचरे को बिल्कुल प्रॉपरली डिस्पोज करें जहां पर उसकी लैंडफिल वो बनी हुई है। और दुनिया में आपको पता है कि कचरे से बाकायदा बिजली पैदा की जाती है, इस तरह से मुफीद कामों में उसको यूज किया जाता है। तो आम आदमी तो यही कर सकता है, यही करे कि वो अपना, यानी अपने यहाँ वो अगर कार रोजाना बच्चों को कार में लाता है स्कूल में, तो हफ्ते में एक आध दिन ऐसा करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, साइकिल का, बाईसाइकिल का। और इस तरह से आम आदमी तो यही कर सकता है, कचरा कम फैलाए और ये कि उसका ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। आपकी जो घर के अंदर जो बिजली होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उससे भी आप एनर्जी का इस्तेमाल कम करें। जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइटें ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करें और उसको प्लग ना छोड़ें, स्विच को हमेशा ऑन ना छोड़ें। ये छोटी छोटी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया डॉक्टर सरदार सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, अपना फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सट्रीम वेदर और इसकी क्या क्या वजूहत होती हैं और क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली से क्या मुराद है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होंगी, अब मालूम हो चुकी होंगी। तो ये सेगमेंट करने का मकसद स्पेशली तमाम लोगों तक आगाही पहुंचाना, और स्पेशली वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आई होप कि जी आपने बहुत कुछ जाना होगा आज के सेगमेंट से भी। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट आज का यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सुना साईं, कुछ खबर अथव?
5: छा थियो सोणी?
4: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
5: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: रोजानो चकास अल्ट्रासाउंड फ्री में कयो वञे थो जैमें

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को इंटरटेन करेंगे और साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे रिसीव हो चुके हैं. और मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलते हैं. तो हमें मैसेज किया है जी हैप्पी गर्ल ने. हैप्पी गर्ल लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्वीट आरजे जी. वालेकुम अस्सलाम हैप्पी गर्ल. और इसके अलावा इस्लाम कोट प्रताप भील ठेड़ी से एंड नहल चंद इस्लाम कोट बहुत दूर है थर पार कर, ये लिखा है मैसेज में. अच्छा, मैंने पूछा था क्या कमेंट्स की तरफ. बहुत सारे कमेंट्स किए हैं लोगों ने. स्मार्ट हाइसिस कैसे हैं आप. रात से मैं सखर में था और जब सखर में एंट्री की तो पता नहीं क्यों आपका ख्याल आया. अभी रास्ते में हूँ. वापसी के रास्ते में है या सखर में ही कहीं पे रास्ते में है. अच्छा, इसके अलावा अब्दुल कयूम शेख हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू फ्रॉम लारकाना. इसके अलावा नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं. नजीर खोसो का कमेंट आया है, कहते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पररी. व्हाट अदर्स गिव्स यू व्हाट रिमेन्स एंड व्हाट अदर्स टेक विल अवे गो. देयर इज ओनली वन गुड डीड. वेरी वेल सेड. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही है. वेलकम टू द शो. वेलकम टू यू एज वेल.

ओके जी, हैप्पी गर्ल का मैसेज आया है. हैप्पी गर्ल लिखती है कि आरजे बुआ सीमा आपको सलाम कह रही है. वालेकुम अस्सलाम सीमा बुआ को आपकी. अच्छा, इस गाने की एक लाइन बहुत खूबसूरत है और हमेशा मैं उस एक लाइन के लिए पूरा गाना प्ले करती हूँ. और हाँ, वही वाली जो आतिफ असलम ने गाई है, कमेंट आया है. हाँ जी, वही वाली लाइन. और अब आएंगी वो लाइन्स.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Okay, next and last lucky caller. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. Sir Dard, kya khaya hai subah? Itni jaldi jaldi baar baar call lag rahi hai. Kya khaya hai?
1: Chai
0: pi hai. Us din bhi chai pi thi na?
1: जी
0: बिल्कुल. बस ये चाय का कमाल है. चलिए ठीक है. अच्छा आज की अच्छी बात बताओ सर दर्द.
1: जी आज की अच्छी बात, अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजबान दो ऐसे है जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते.
0: वेरी वेल सेड, वेरी नाइस. कहाँ से सुनी है इतनी बड़ी अच्छी बातें. हाँ देखो कितनी बड़ी हो गई हो. बस मुझे सुनते सुनते बड़ी हो गई है सर दर्द. बचपन से सुन रही है मुझे.
1: हाँ
0: है ना. अच्छा और कुछ कहना है.
1: अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़. थैंक.

ओके जी, फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और आपकी और मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी होता है। लोसम पर थिंक हाई। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट। टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: अमेरिकी फौज जे चौथे ॾींहुं बि ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते लगातार 7 कलाक बमबारी। तहरान जे बहरी नाकाबंदी बि बरक़रार। सेनेट काम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जो बि अमेरिका ते जवाबी वार। कुवैत बहरीन अर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज अर्दन में अमेरिकी अॾनि ते हमिलो बि कयो ऐं वीडियो बि जारी करे छॾी। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरान जो बि बरामद रोकियूं वयूं त हिते जी तवानाई रस्त मुतासिर थी सघे थी।
1: वॾे वज़ीर मोहम्मद अली शाह सां पेगाने अमन कमेटी जी मुलाकात। वॾे वज़ीर मोहम्मद अली शाह चयो त अमन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए इस्तकाम आणे सघिजे थो। अलामा ताहिर अशरीफ़ी चयो त सिंध जी मज़हबी हम आहंगी समूरे मुल्क लाइ मिसाल आहे। वतन जी सलामती इस्तकाम ते को बि ठाह न कयो वेंदो। दुनिया जे साम्हूं खारजी ऐं भारतीय फितना बेनकाब थी। मुल्क सलामती ऐं इस्तकाम ते को बि ठाह न कयो वेंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे चौमासे जे वसकारनि दौरान सूबनि सां राब्ता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। NDMA

0: Ready.
1: पेंशन का रियायती या खैरात न पर मुलाजमन जो कानूनी हक आहे सिंध हाई कोर्ट टीएमसी जे रिटायर्ड सेनेटरी वर्कर्स के पेंशन राहत ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच जो 6 हफ़्तनि में मुलाज़मन खे राहतूं अदा करण जो हुकुम। अदालत चयो त पेंशन जी अदायगी में देर सरकारी इदारनि जी नाकामी बराबरि आहे।
0: हैदराबाद भरिसां हथियारबंदनि नौजवान खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। जतोई ॻोठ में अनवर खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो, लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: गोसपुर वेझो मुबैना पुलिस मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियल ट्रैक्टर ड्राइवर दम ॾेई छॾियो। वारसनि जो लाश रखी धरणो, ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। ॻोठ मोहम्मद हयातो गाई वासी महरुला शेख सखर जे अस्पताल में ज़ख़्मी असूर नसांदे दम ॾिनो। ॻोठाणे जे वारसनि लाश बस स्टॉप ते रखी कश्मूर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सदन चवण आहे त पुलिस गुज़िरियल राति पोइरत खे मोटरसाइकिल न बीहारण तां गोलियूं हणी मर्डरिंग कयो हो। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
0: जीएसटी ऐं आईबीए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। दादू में जीएसटी टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। लाड़काणे में आईबीए टेस्ट पास जे एसटी उम्मीदवारनि जो मुज़ाहिरो। नौशहरो फिरोज में उम्मीदवारनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो, मेरिट ते नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, बुलंद रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

तुम्हारी उम्मीद मौजजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और प्रोग्राम में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये भी बताते हैं जनाब, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसका नाम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किस तरह आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो जानने को मिलती हैं। ओके जी, तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखेंगे तो वो ख्याल जो है वो किस तरह आपके चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखेगा और आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता भी रहेगा। तो बिल्कुल जी सब कुछ बताएंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, सो इज एंड टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को भी वेलकम करते हैं और साथ साथ जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, आंतक की हालत कैसे है आपकी हालत है? उम्मीद है चतीदम के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और सुनाओ फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक, यानी कि पूरी तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल जी साथ साथ रहेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे और इसके अलावा बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन भी एंजॉय करने वाले और आप लोगों के साथ बातें करते करते आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते रहेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होटो पर 440 रुपए की समाल लाने के लिए। बिल्कुल नहीं, तो आपके होटो पर 440 रुपए की समाल लाते हो, यहाँ पर ऐसा करते ही आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं।

और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ. तो बहुत ही प्यारा सा कसीदा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते

बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर कसीदा आप एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते रहेंगे और शामिल प्रोग्राम होते रहेंगे और क्या तरीकेकार होंगे जिसे फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे बताएंगे जी बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो तो बता दें पहले। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है तो वो जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखा जाए तो ये थोड़ा सा सवाल जो है ना वो मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, अगर ऐसा ऑप्शंस मिले, यानी कि ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में वाकई बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें मिल रहे होते हैं, तो वैसे ही अगर आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें आप लोगों के पास जो है ना, या आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास आपका जो फोन है वो 100% चार्ज हो लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं हो, या फिर उसमें इंटरनेट हो लेकिन उसमें जो है ना 1% चार्ज हो, तो इस सूरत हाल में आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? इंटरनेट के बिना तो मोबाइल वैसे थोड़ा सा बेकार लग रहा होता है, लेकिन इंटरनेट हो और चार्जिंग ना हो तो ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की जो है ना वो सिर्फ आप लोगों को छूट है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? आपका मोबाइल 100% चार्ज हो और उसके अंदर इंटरनेट ना हो, या फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि भाई इंटरनेट मिल जाए चाहे मोबाइल 1% ही क्यों ना हो उस 1% में भी हम देख लेंगे जो हमने देखना हो। तो मुझे दिल से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस टॉपिक को फॉलो करेंगे, और अगर शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए जल्दी से और पेज को जरा फॉलो कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डेज स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाए तो जल्दी से पोस्ट पर आप आ जाइए, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो जल्दी जाइए और बताइए जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डेज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए या अभी तक नहीं, और देखिए तो जरा आज पोस्ट पर नई नई वीडियो लगाई हुई है जनाब, जो कि विटामिन सी व्हाइट एशियन का जो फेस वॉश है उसकी है, और कितना अच्छा जो है ये फेस वॉश है ये तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और देखा जाए तो हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश है, अगर आप साबुन लगाते हैं तो साबुन है, अगर आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो नाइट क्रीम है, अगर आप फेयरनेस क्रीम लगाते हैं तो फेयरनेस क्रीम है, अगर आप एक्ने की वजह से परेशान है तो आपके पास एक्नी फार्मूला भी है। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही मजेदार और बहुत ही जो है ना वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके लिए व्हाइट एज वालों ने तैयार किए हैं, तो अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, खूबसूरती को वैल्यू देना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में जरा खूबसूरती से रहना चाहते हैं तो आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, और मजीद तफसीलन आपको बताते रहेंगे। लेकिन साथ साथ ऐसा है कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे 03 1579 0595 15 79 9595, यही नंबर आज जिसे तुम्हारा रब्तो करें पांचे करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन उन्हें की तमाम अवेलेबल कराए से होता है, ठीक है? सो बिल्कुल सी अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए, और मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आदिल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशाहीं जी खुशाहीं, और कहते हैं कि वो अकेला भी हो मालूम नहीं, ये तमाशा भी हो मालूम नहीं, उसने मुड़कर भी नहीं देखा मुझे और देखा भी हो मालूम नहीं, लोग तो प्यारे बहुत होते हैं कोई तुम सा भी हो मालूम नहीं। ओके, नजीर कुसुमी सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, खुश आमदीद। और जी आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर सिटी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा कैसी हैं? मासूमा ठीक है, आप बताएं आप कैसे? नजीर भाई कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ आरजी है, जो दूसरों ने दिया वही है, और जो दूसरों के लिए है जाएंगे वही जाएगा, अपना सिर्फ एक ही नेक अमल साथ लेकर जाएंगे। चले मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात शेयर करी, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और आकाश अली हमारे साथ मौजूद, कहते हैं हाय आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, मैं आकाश अली पीर जादो फ्रॉम सिटी मोरो, आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी सारी फैमिली आपका शो बहुत शौक से सुनती है, थैंक यू आपकी सारी फैमिली को।
اور جناب خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتے ہیں. اور یہاں پر منور عباس ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام, لاہور سے آپ ہمارا شو سن رہے جی, خوش آمدید. عامر کہتے ہیں معصومہ یہ پوئٹری چلو آپ کی دنیا چھوڑ دیتے ہیں. معصومہ سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں دور چلے جانے کے بعد, کچھ ہی کرتے ہیں سارے نہیں کرتے. اور ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو یاد دلانے کے چکر میں بس پیالہ ہی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اور ان کے علاوہ گلریز علی چانڈیو ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام سے جو آپ کے ایسی مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کا شو سن رہا ہوں, بہت اچھا شو ہے. آج مجھے ماسٹر منظور کا گانا سنائیے گا, کل میں نے لگایا تھا آپ کے لیے, شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آج بھی لگا ہی لیں گے. واسا بھائی ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو. اخلاق بلوچ آ چکے, کہتے پھوکا چھوڑے نہیں یہ تو میری عادت ہے برسوں پرانی. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ویری نائس یور شو صدرا, کیا تعریف کرے آواز اچھی ہے اور ساتھ ساتھ پروگرام گڈ ہے. اور سانگ ریکویسٹ ہے جی, میں کوشش کرتی ہوں آپ کا پسند کا گانا لگا لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, یا پھر آپ ابھی تیاریوں میں ہیں کہ ہاں جی ہم لگانے والے ہیں. محمد زمان آ چکے, محمد زمان بھائی گڈ آفٹر نون. سجاد بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام جی کیسے ہیں. بلال علی کہتے ہیں السلام علیکم محترمہ, آج ماں بھی سویرا آئم, آج تمام بھی سویرا پہنچی, آج ہی تمام کی چوتھا بھلی کری آیا. عمران علی عباسی ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام. راندن

में ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल आप सब लोगों को वेलकम इन खुशामदीद। और यहाँ पर जो है ना टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहने और सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं सरा यू जाकर यू वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज,
1: GFM 91.6।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ही वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर बोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धर आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन कौन है मुझे बताते जाएंगे और सर अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे और आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो भी जरा बताते जाइए। और मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहें या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट्स हैं। ओके जी, तो वो तो सब कुछ बताएंगे लेकिन साथ साथ जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया अभी अभी सुनना स्टार्ट किया उनको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से जो है ना वो टॉपिक क्या पूछा गया है। ओके, सो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि अगर आपके फोन की बैटरी 100% चार्ज हो और आपके पास इंटरनेट ना हो, ठीक है, या आपके पास इंटरनेट हो और आपकी बैटरी 1% चार्ज हो, तो आप इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज को चूज करने वाले हैं? आपके पास 100% मोबाइल चार्ज हो और इंटरनेट ना हो, चलें कोई बात नहीं, आप सह लेंगे थोड़ा सा, या फिर इंटरनेट हो भाई हमें इंटरनेट चाहिए चाहे मोबाइल चार्ज हो या ना हो, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जी। लेकिन आप बताएं कि आप क्या चूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप उनमें से कौन सा प्रोडक्ट चूज करने वाले हैं? ओके, जैसे पहले से आप जानते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे अच्छे अच्छे कितने सारे मजे के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते ही वहां से नाम लेकर पाते हैं। और जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो और आपको नहीं मिलते प्रोडक्ट्स तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-5595 ही बाबा नंबर आए जो तुम डायल करें पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सगो था व्हाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स जेके भी तुम्हारा इस्तेमाल करण चाहो था। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे खबर आए तो कड़ा कड़ा प्रोडक्ट मौजूद आए आई तुम्हें बुधाईदासी तो अगर तुम पांजी स्किन जो ख्याल करण चाहो था ताकि पांजी स्किन प्यारी आए तो तुम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसो बाबा आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जी नाइट क्रीम आए जैसे तुम राज टाइम इस्तेमाल करी सगो था आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जी सब का बेहतरीन गाल बुधाए तो ही नेचुरल अजा से तैयार थियल प्रोडक्ट आए खोड़ मरतबा तुम जरा कंफ्यूज इन गाल में थी वेंदा तो बाबा अगर असा कोई भी प्रोडक्ट करूं था तो छा खबर इन अंदर मता केमिकल हुजन आई अगर तुम केमिकल का थोड़ो अवॉइड करना है तुम्हें करण भी घुर्जे कोई तुम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सको था व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जिनके अंदर एवोकाडो मौजूद है एलोवेरा मौजूद है मिल्क मौजूद है खीर मौजूद है समझो था तो ही सब चीजों मिली करी तुम्हें खूबसूरती की वधाई दू तुम खूबसूरती से जी भी प्रॉब्लम्स आए वो सब खत्म थी वा तुम ग्लो कदा बाबा तुम खूबसूरती तुम वापस मिली वी क्योंकि जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल कर दी तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम साबित होने वाली है। ये आपकी जल्द को नरम मुलायम तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का तो आपके चेहरे की जो खुश्की है और दाग धब्बे हैं बेरोनकी है ये सारी चीजें कम हो जाती हैं जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास अज्जा जो कि आपकी जल्द की हिफाजत करते हैं और आपको कुदरती खूबसूरती का एहसास भी देते हैं। यानी कि जब आप इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि वाकई भाई अब तो हम नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहे हैं चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो जल्दी जल्दी से व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा साथ में आपको मिल रहा है जी व्हाइट एज ब्यूटी सोप एंड व्हाइट एज फेस वॉश। अब आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि आप सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं। अगर आप सोप लगाते हैं तो आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो आपके पास व्हाइट एज का फेस वॉश भी मौजूद है जो जनाब विटामिन सी से तैयार किया गया है। इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए और बहुत ही बेहतरीन क्रीमी सा फेस वॉश है। इसे आप इस्तेमाल कीजिए। 100% जो है ये नेचुरल अजा से तैयार किया गया है। आपकी स्किन को जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें जो है ना इसके अंदर मौजूद है। तो व्हाइट एज का सोप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस वॉश भी लगा सकते हैं। बाकी अगर बात हो यहाँ पर व्हाइट एज लवली क्रीम की तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आप फेयरनेस क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
یعنی کہ اگر آپ گرمیوں کے سیزن میں میک اپ نہیں لگا پاتے ہیں, آپ لوگوں کی جاب ہے, ڈیلی بیسس پر آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے, آپ کہیں جاتے ہیں لیکن تھوپڑا سرا خراب ہے, اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا, تو اس کے لیے وائٹ ایش لولی کریم آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا, بس آپ وائٹ ایش لولی کریم جو ہے نا ایسے پرچیز کریں گے, اور وائٹ ایش لولی کریم جس کے اندر 30 وائٹمنس کے کیپسولس ایڈ ہیں جناب, ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس کا فارمولا ہے, اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, اس کے اندر سنسکرین بھی موجود ہے جو کہ آپ کی اسکن کی حفاظت کرے گی, آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے سورج کے ان خطرناک اثرات سے جو آپ کی اسکن کو ڈل بنا دیتے ہیں, آپ کی اسکن کو بالکل مار ہی دیتے ہیں. تو آپ نے بھی وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کرنا ہے, چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, کسی شادی میں جا رہے ہیں, کوئی پارٹی ہے, کوئی فنکشن ہے, تو آپ وائٹ ایش لولی کریم لگا کر چٹکیوں میں ریڈی ہو سکتے ہیں, میک اپ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا, اور یہ فیئرنیس کریم ہے تو اس میں کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے, گھر کا ہر ایک فرد اسے استعمال کر سکتا ہے, بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, سارے لوگ ہی لگائیں گے تاکہ آپ اپنی خوبصورتی میں بڑھتا ہوا جو ہے نا نکھار دیکھ سکے, اور آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی آپ کے پاس بھی اب اچھے پروڈکٹس موجود ہیں. تو وائٹ ایش لولی کریم لگائیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے جائیے, اور ساتھ ساتھ ڈال کرتے جائیے 03157990595 بڑی 315 79 595.

आंटी बिल्कुल तव्हां बि वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो सही आहे कमायो था त थोरो पाण ते ख़र्च करणु सिखो अच्छा बिलाल कहते हैं कि कल मुझे सड़क से मोबाइल मिला है जिसका भी है मेहरबानी करके उसकी हैंड फ्री और चार्जर मुझ तक पहुंचा दे सही है भाई सही है और मोहम्मद जमान भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा देंगे और हैं जी एस एन आर बाणी वालेकुम असलम असाम यची वयासीं खैर सां ओ सिदरा चाला उम्मीद त खुश हूंदा शाद हूंदो आबाद हूंदो न याद हूंदो नई विसरंदो बिल्कुल जी शाद आहियूं आबाद आहियूं ऐं तव्हांजी दुआऊं खपनि अब्दुल गफ़ार हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ार शाहपुर चाकर तालुका शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगर से हमारे साथ हैं जी बहुत शुक्रिया खुश आमदी और साजिद हुसैन सुमरो हैं शो नाइस जी आपका बहुत शुक्रिया जी आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम डीआईजी ऑफिस लाड़काना खुश आमदीद आमिर कहते हैं टॉपिक 100% चार्ज लाजमी है ओके जी उदास लड़की आ चुकी है वालेकुम अस्सलाम सलामत कैसी हो प्यारी आरजे वेलकम टू शो खुश आमदीद जानू लियाकत अली अब्बासी हमारे साथ सलाम आरजे बस मोबाइल फुल चार्ज हो बाकी काम हम खुद कर लेंगे चले ये भी अच्छी बात है अच्छा उनका अलावा मोहम्मद जमान कहते आंसर सिलेक्शन करेंगे हम बैटरी फुल कीपैड फोन जिसमें आपका शो सुन सके नेट हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे वो भी अलाउ नहीं है ना सिर्फ बस फोन चार्ज चाहिए या फिर आपको नेट चाहिए बताएं जरा तो चलें आपने वैसे चार्जिंग को सिलेक्ट किया है और सजाद बलोच हमें सुन रहे कहते हैं बैटरी फुल चाहिए बाबा रिहान अली हमें सुन रहे हैं वालेकुम और सवेरा अली हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम सवेरा को भी खुश आमदीद और सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं जी वेलकम दर्द दिल हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम स्वीटी कैसी हैं और जी हमारे साथ हैं दर्द दिल कहती हैं कि अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता हैं तो यकीन जानिए आपका वजूद काबिले रश्क है अल्लाह आप अल्लाह के खास बंदे हैं बहुत शुक्रिया जी क्या बात है इतनी अच्छी बात आपने शेयर कर दी था कितना पुराना है तमाम लाड़काना में आयो तुक्का लगा लिया मेरे देखे कितना सही है अच्छा इखलाक भाई कहते आंसर 1% मोबाइल चार्ज कर लेंगे और क्या बिजली तो है ना हाँ सही ओके जी तो खां पैसा न प्यारा कंदासीं बाबा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स खां पैसा प्यारा न कयो ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जेको बि प्रोडक्ट तव्हांखे लॻे थो त हीउ प्रोडक्ट असांजे ख़ूबसूरती जे मुताबिक़ आहे त भॼंदा वञो वठी अचो ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो ऐं साणो साण तव्हां नंबर ते राबितो कंदा रहो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ई तव्हां प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि अवेलेबल थींदा तॾहिं त तव्हांखे वठण में आसानी थींदी सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाईंदा जीअं सभु फास्ट सुहिणा थी वञनि

बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल कीजिए और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं बताइए, और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए। अच्छा, अब्दुल रजा कहते हैं सवाल जवाब मोबाइल भले कितनी भी पर्सन चार्ज हो जाए पर नेटवर्क न हूं दो तो कहीं भी कमर जोना है। गाल तो तुम्हारा सही जो था। हाँ, मैंने वही आते साथ ही बोला कि आज जो है वो वीडियो में आपको एक नया वीडियो मिल रहा होगा जो कि भाई व्हाइट एज के ना जो फेस वॉश है उसके ऊपर है, और देख सकते हैं आपके कितने अच्छे तरीके से व्हाइट एज का विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना ये तैयार किया है, ताकि अगर आप भी इस्तेमाल करें तो ये जो इतनी खूबसूरत सी लड़की है ना इसकी तरह आप भी खूबसूरत हो जाए। और देखें जी किस तरह खूबसूरती आपको मिलती है जब आप भी विटामिन जी बिल्कुल विटामिन सी का ये व्हाइट एज का फेस वॉश लगाने वाले हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा फेस वॉश आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। तो आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, मिल रहा है तो परचेज कीजिए। अच्छा, दर्दे दिल लिखती हैं कि टॉपिक इंटरनेट हो मोबाइल को चार्जिंग पर लगा हुआ चलाती रहूंगी। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, हेलो जी। इमरान अली अब्बासी हमारे साथ हैं, थैंक यू। अच्छा, चाचा खालिद कहते हैं कि गई हुई चीज कहाँ वापस मिलती है, आप कह रही हैं कि आपको खूबसूरती वापस मिल जाएगी व्हाइट एज लवली क्रीम लगाने से। अस्सलाम वालेकुम, को कहने का ना एक ठोस सबूत है मेरे पास वो ऐसे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ना वो वाली खूबसूरती मिल जाती है जो हमारी कहीं खो चुकी होती है। अगर आपकी स्किन कहीं डल हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी आ चुके हैं, एक्नी निशानात आपके चेहरे पर छोड़ गए हैं, आपको लगता है कि ये तो भाई कभी जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये जा सकते हैं जब आप कोई अच्छा वाला कोई इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जैसे कि आप लोगों की खूबसूरती को उसकी जरूरत हो। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, और व्हाइट एज लवली क्रीम भी है जनाब जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में जो है ना वो बढ़ावा भी कर सकते हैं, अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस भी ला सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम और ये फेयरनेस क्रीम है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है, तो दोनों क्रीमों में थोड़ा सा फर्क है। अलावा मां तमां के डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के बारे में ना ही बुधायो, हाने वेठे वेठे मुख्य गाल याद अची वही।

अनुराग भाई बिल्कुल सही करे कि निगहत नाज इन क्रीम के लगाए करे पो पंजे जानी के मनाए सके थी बिल्कुल जी तमा अगर व्हाइट एज प्योरी क्रीम जो इस्तेमाल करना ता सोना एतरा थी ना काय रिजेक्शन तमा जे लाए होंदी न सो तमा व्हाइट एज प्रोडक्ट इस्तेमाल करी अगर तमा पाजे चेहरे जे एक्ने जी वजह से परेशान आए तो एक्ने के खत्म करने लाए तमा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मौजूद आए ही ट्यूब भई तैयारी न तरीके से थयल आए तमा जा अगर एक्ने आए आई घणा पुराना एक्ने आए या कुछ एड़ा एक्ने हुंदा है जके भई अगर तमा जी टीनेजर हुंदा ता तमा के अची वेना है उनका अलावा अगर तमा जी उम्र भले वधंदी भी वने थी पो भी एक्ने तमा जो जान न छडींदा तो उनन एक्नेस के खत्म करने लाए तमा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमाल करे सको ता ही फुल डॉक्टर जी निगरानी जी अंदर तैयार थल प्रोडक्ट आहे आई कोई भी न जी अंदर केमिकल ना ही फुल आयुर्वेदिक फार्मूला यानी के नेचुरल अजाइन जी अंदर मौजूद आहे आई जड़ी बूटियों न सा जकन जड़ी बूटिन के मिलाए करे ही जेको ट्यूब तमा जला तैयार कयो आहे आई जदी तमा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमाल करना ता तमा जी चेहरे जा एक्ने हुजन एक्ने जा निशान हुजन एक्ने केड़ी भी तरह जो आहे या तमा जे चेहरे ते ब्लैक पॉट्स हुजन ब्लैक हेड्स हुजन व्हाइट हेड्स हुजन या फिर तमा जे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल हो जाए कुछ भी हो जाए तमा जे चेहरे ते बिल्कुल खत्म थिनो ही भई आजमायल ट्यूब आहे मुखे भी एक्ने जो इशू हुंदो आहे पर उन जे अलावा अगर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तमा इस्तेमाल करना ता तमा जे चेहरे जो एक्ने तशा एक्ने जो निशान भी गायब थी वेंदो आई न सिर्फ एक्ने जा निशान बल्कि तमा जे चेहरे ते कोई कट जो निशान आ कोई सड़न जो निशान आ त ही निशान भी खत्म थी वेंदा सो तमा लाज़मी लगायो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाने का पोई तमा जी स्किन बेदाग थी वेंदी गोरी थी वेंदी आई तमा सोना सोना थी वेंदा सो ही ट्यूब लगाने के तरीके कार बिल्कुल यंदा तमा ब टाइम लगाए सगो था तमा सुबह जो भी लगाइंदा आई तमा रात जो भी लगाइंदा ही जेको ट्यूब आ ने एतरो वीआईपी आई तमा जदी लगाइंदा पने फेस ते एरो थदो थदो तांगे फील थिंदो आ आई गर्मी जो मौसम है जेके मानो एक्ने जी वजह से काफी परेशान हुंदा है त तमा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के एक दफा लाज़मी लगाए दिसजो आई तमा जा एक्ने भई एक चक्कर लगाने में थोड़ा खत्म थी वेंदा जदी तमा सुबह शाम लगाइंदा तबो तमा जा एक्ने खत्म थिंदा एक्ने जा निशान खत्म थिंदा सफा पाड़ पटजी वेंदा सो तां लाज़मी ट्राई करे दिसो तांके मजो अची वेंदो।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए जरा कौन कौन हमारे साथ हैं। अच्छा, इमरान भाई कहते हैं कि बस मोबाइल मिल जाए तो अच्छा है, नेट हो या ना हो। हल भाई के तकेश ऐसा फर्क ही न तो पवे। गुलरेस अली सानो कहते हैं हमें आता नहीं है हर किसी के सामने झुकना, हम अहले फिक्र हैं, आदात दरबारी नहीं रखते। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, क्लाक भाई कहते हैं जी जी जी जी, तां भी वाइटी जो प्रोडक्ट लगाए सगो था हर के जी लाए आए न। और किशोर भाई कहते हैं द आंसर 100% बैटरी, इंटरनेट खां भी जरूरी, दिल से करीब वारो नेट आए, माना मोबाइल चार्ज हो जाए ये ना। आई चौथा ऐ मतलब जेको तेको जेको आ ना नारायण कागन वयो आ मुझे आसपास जेके मानु आन मतलब जेके दिस सब वनन पया घुमण असा हते गर्मी में मरी वया सी असा वरी छुट्टी जो जेको प्रॉब्लम आ ना वो भी आए थोड़ो छुट्टी न जो मिली सके सो असा वरी नेक्स्ट ईयर वेंदा सी इंशाल्लाह। ता घुमो फिरो, एंजॉय कयो बाबा असा जे से।

गिदड़ी कहती है कि टॉपिक जरूरी तो दोनों ही हैं, बट मेरा जवाब है बैटरी फुल होनी ज्यादा जरूरी है, और मैं तो मोबाइल लो होने ही नहीं देती। अच्छा करती हैं आप, बहुत अच्छा करती हैं। हीरो शुएब हमारे साथ हैं। सलाम डियर, कैसी हो? मैं न्यू लिसनर हूँ, खैरापुर से सुन रहा हूँ। आई एम हीरो शुएब। खुश आमदीद कहते हैं हीरो आपको।

बिल्कुल वाइट एशियन जीज के ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम तो लोगों की मोहब्बतें हैं जनाब कि आप हमारे शो को लाइक करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, शो को भी लाइक करते हैं और साथ साथ वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा तो मैं इरफान सियाल साहब आपके साथ मौजूद हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कहाँ कहाँ से जाकर जो है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा वो परचेज कर सकते हैं। तो मैं इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद के थे ग्रेट होस्टिंग में मार जी, गुड आफ्टरनून, ग्रेट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल जी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमारे दिल के बहुत करीब, हम पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मैंशन कीजिए, सबको पता चलना चाहिए मार्केट में वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन है जनाब। और इसके अलावा यहाँ पर जो है टाइम हुआ जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: ईरान है अमेरिका विच में तकरार शिद्दत कर रहे हो अमेरिकी सदर ट्रंप जे ईरानी बिजली घरन के निशानों बनाए वारी धमकी बाद अरब मुल्कन में हाई अलर्ट ईरान जो भी हमलन जी बंदिश ताई अपना हर्मुज़ के न खोलण जो ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप चयो आहे त तेहरान गालन जे मेज ते वापस न आयो त ईंदड़ हफ्ते ईरान में बिजली घरन ऐं पुलन खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़दशान अमेरिकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं।
2: बलूचिस्तान में कार इनकलाब जारी ऑपरेशन
3: फ्रेशनेस का एहसास पूरा दिन और किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं, महको हर पल विद ब्लैक ब्यूटी टैल्कम पाउडर।
2: कार्रवाई में टे दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग 88 थी पियो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ठाकनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारजी चुका आहिनि।

0: सियासत जे मैदान में सियासत कयो, असांजे ॿारनि जी तोहीन न कयो। इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ न आहे। मौलाना ताहिर अशरफ़ीअ जे पैगाम अमन कमेटी जी वफ़द सौदो, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध जूं रिवायतूं ऐं मज़हबी हमांगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफ़ी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अख़वत जो पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त अमुन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए इस्तक़ाम माणे सघिजे थो। शर्जील इनाम मेमण चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख़्रु आहे।
1: पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फजल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब न आहे हूंदो, क़ौम दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फजल रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे, मौलाना फजल रहमान दुरुस्त न आहे, माफ़ी वठे।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे चौमासे जे वसकारन दौरान सूबनि सां राब्ता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। NDMA चेयरमैन वज़ीर आज़म खे मूनसून बरसातनि दौरान तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। अॻवाट इतलाउ वारो निज़ाम फाल बणाइण बाबति बे आगाही ॾिनी वई।
1: वधंदड़ आबादी मुल्क लाइ वॾो चैलेंज आहे। मुल्की तरक़ी ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादी जो मुनासिब हुजणु ज़रूरी आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त वधंदड़ आबादी ऐं मौसमियाती चैलेंजेस खे वक़्त सिर क़ाबू करणु ज़रूरी आहे। मुल्क जी वधंदड़ आबादी वसीलनि ऐं मैशियत ते ॿार बणजी रही आहे।
0: वफ़ाक़ी आईनी अदालत SPSC ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम मुअत्तल करे छॾियो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उमीदवारनि जा इंटरव्यूज रोकण बाबति सिंध हाई कोर्ट जो हुकुम बि मुअत्तल। फेल थियल उमीदवारनि जा पेपर ॿीहर चेक करण वारो हुकुम बि मुअत्तल। आईनी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी अपील ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस बाकर नज़वी रिमार्क्स ॾींदे चयो त सिंध हाई कोर्ट अबूरी हुकुमनामे ई रिलीफ ॾेई छॾियो आहे।
1: कराचीअ में फुरमज़मत ते क़तल कयल डॉक्टर आकाश वारे केस में अकबराई टे जवाबदार गिरफ़्तार। गिरफ़्तार जवाबदारनि में उस्ताद बि शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे DIG साउथ चयो त सेफ सिटी कैमराउनि जी मदद सां जवाबदारनि ते पहुता आहियूं। ॾोह लाइ ॿिनि मोटरसाइकल्स, हिक कार खे इस्तेमाल कयो वियो। टिनि जवाबदारनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। टिनी जो वास्तो हिंदू कम्यूनिटी सां आहे। ॾोह लाइ इस्तेमाल थियल हथियार कया आहिनि। फुर वारी रक़म बि मिली आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
5: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर
2: एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, तो प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। तो जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया, जिन लोगों ने भाई स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ साथ मौजूद रहे, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से जो है ना, आप हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। खूबसूरती को बढ़ाना और खूबसूरती को मेंटेन करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाते हैं लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना आपको नहीं आता, तो जनाब यकीन जाने कि आपकी जो खूबसूरती है ना, वो थोड़ी सी जो है वो संभल नहीं पाएगी और आपको आगे जाकर उसके थोड़े से नुकसानदेह असरात भी सामने नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी खूबसूरती हमें मिले लेकिन वो खूबसूरती मेंटेन भी होती रहे, तो आपके पास जो हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं उनकी क्या ऐसी खास क्वालिटीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बेहतर से भी बेहतरीन वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो पहले मैंने आप लोगों को YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो फिलहाल अभी जो है आप लोगों को बारी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हिसाब से बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी क्रीम है जिसे भाई फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसको अगर आप परचेज करेंगे ना, जब आप क्रीम परचेज करने के लिए जाएं तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि क्रीम के डब्बी के ऊपर जो है ना डॉक्टर का फोटो है। डॉक्टर का फोटो इसलिए है ताकि ये चीज आप लोगों के जहनों में क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसा आम प्रोडक्ट नहीं है, मामूली प्रोडक्ट नहीं है। ये फुल जो है ना इसे मेडिकेटेड तरीके से तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और इसे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है और सेंसिटिव स्किन रहने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट इजीली जो है ना वो सूट नहीं करता उनके चेहरे के ऊपर, वो लगा नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। तो भाई आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो तैयार किया गया है विटामिनी बीट से। इसके अंदर माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन भी मौजूद है और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इसके अंदर आपको अल्फा आर्बुटीन भी मिलेगा, कोजिक एसिड भी है, ग्लूटाथायोन भी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, आपकी स्किन अगर सांवली हो चुकी है तो उसको गोरा बनाने के लिए और इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काफी है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है लेकिन वो 18 साल की उम्र के बाद ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सोचें कि भाई हम बच्चे हैं बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चे नहीं लगाएं क्योंकि ये नाइट क्रीम है। तो नाइट क्रीम है उन लोगों के लिए होती है जो टीनेजर्स हैं, 18 साल के बाद उनकी उम्र जो है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी में आपके चेहरे में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो उन चेंजिंग को, उन एक्नीज हो या फिर जिस तरह की भी चीजें आपकी स्किन के साथ आ जाती है, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए और आपकी स्किन को हमेशा ब्यूटीफुल बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर इस तरह के सीरम्स एड किए गए हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन रखने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए काफी है। तो डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतनी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप वाकई कोई नॉर्मल सी व्हाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमतों में आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप बस जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से परचेज कीजिए और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03157990595 बुढ़ी 1300 1599

में जी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन सा गाना मैंने लिस्ट में लगाया है जो कि मास्टर मंजूर साहब की आवाज में है। उन लोगों को डेडिकेट जाता है जो मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइशें करते हैं। अच्छा अब्दुल कयूम शेख हमारे साथ है, सिर्फ मोबाइल चार्ज हो मगर नेट नहीं हो तो ऑप्शन बेहतर है, इससे नेट हो और मोबाइल चार्ज ना हो तो ये बेस्ट है। अब मुझे बात समझ आई कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अब्दुल कयूम शेख ओके जी आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ साथ। तो जिन लोगों ने अभी सुना प्रोग्राम स्टार्ट किया उनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं आपके पास जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का चांस है आप लोगों को, तो आप मुझे बताएंगे अगर आपका फोन जो है उसकी बैटरी 100% चार्ज हो और आपके पास इंटरनेट ना हो, या फिर आपके पास इंटरनेट हो और आपका मोबाइल फोन जो है वो सिर्फ 1% चार्ज हो, तो आप क्या चूज करने वाले, क्या सिलेक्ट करेंगे?

जी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में वाकई ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी में गुजारा तो क्या, हम सोच भी नहीं सकते कि उनके बिना हम रह भी पाएंगे। तो ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में भी हैं तो जरा उनका कदर कीजिए और उनको कोशिश करें कि वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहें। और ये जी आबिद, आबिद परियास्ती हैं और आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको कहते हैं, अच्छा कहते हैं मोबाइल 100% चार्ज सही है, काम वाईफाई पर चला देंगे, वाईफाई भी नहीं ना आलो। अच्छा उनका अलावा जी, जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जी। और मूसा कोरी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई जान। दर्द दिल कहती है एक बार ओए होए बोलो ना अल्लाह। अच्छा निदली कहती है कि हाँ राइट, मैं भी प्यारी बन गई हूँ डी स्किन फेस वॉश एंड क्रीम यूज करके। राइट ना, यस निदली लगा रही है डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप भी लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए। शुएब मंगी कहते हैं साजिद अली साजिद का सॉन्ग चला दीजिए, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ। निगरी कहती है हम भी चलते हैं तुर्की, तुर्की तो खैर जाएंगे लेकिन पहले पाकिस्तान में जो है इस तरह के सिटीज वहाँ तो घूम लें। अच्छा आयुष मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। यासीन खंड हमारे साथ हैं, कहते हैं 20% से नीचे नहीं गिरना चाहिए मोबाइल। ओके जी, ओके ओके ओके, टेक्निकल गुरु जी हैं। वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। प्यारी सिद्रा जी आपकी क्या हाल चाल है? जी मैं बेहतरीन हूँ, आप बताएं आप कैसे ठीक ठाक हैं? जेकब आबास आप हमारे शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। शहजाद कादरी हमारे साथ हैं, हेलो। और जी अली मुर्तजा कहते हैं कि हमने हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हम पे वाजिब है कि दोबारा मोहब्बत की जाए। सलाम टू ऑल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? अरे चाचा मैं नहीं कर सकती ना, अगर मैंने करना होता तो मैं कब की कर चुकी होती। जो चीजें हम नहीं करना चाहते हैं तो वो बस नहीं करना चाहते। अच्छा अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ ही, थैंक यू जी। बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने का क्या इरादा है? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। अवेलेबल कराएंगे तो भाईजान ये होगा कि आसानी हो जाएगी आपके लिए, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाएंगे और वहां से नाम लेकर पाएंगे क्या जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड इट्स इन ब्यूटी शो। अच्छा, जुल्फकार अली जखरानी हमारे साथ हैं, जेकब आवाज से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, रुखसार मरी हमारे साथ हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रही हैं, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कहती ओएसटी का फील सुना दीजिए, कल परसों ही तो हमने सुना था। अच्छा बिलाल कहते हैं वो सुकून एससी में भी नहीं जो आपसे बातें करने में है। अल्लाह जय हुदा।

दादा चाचा खालिद कहते हैं मोबाइल सेट चार्ज भी हो और नेटवर्क भी मस्ट, ये टॉपिक है, दोनों चीजें नहीं ना सिलेक्ट कर सकते, एक ही करनी है। गुलरेज भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा ये है अमीर बख्श हमारे साथ, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। अच्छा ये बात है, जब हम छोटे थे तो बड़े लोगों की शादियां होती थी, जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटे लोगों की शादियां हो रही है, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आखिर हमारी जनरेशन के साथ हुआ क्या है। जेन जी है ना, तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, तो ये पता नहीं क्या सीन है। तो टेंशन ना लो, सुकून से रहें, खाएं पिएं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहें।

ओगरी चाचा कहते हैं कि एक बात तो बताएं। नहीं जी, नहीं देखा। और कैसे देख सकती हूँ? और कैसे देख सकती हूँ?

0: ते ठंडक का बेहतरीन, शाह लतीफ का सूफी ठिकाना।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आजकल गर्मियाँ थोड़ी कम हो गई है या फिर ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? या फिर ऐसा है कि हम गर्मियों की आदी हो चुके हैं? ये चाहे इतनी गर्मी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई जान।

जी प्रोग्राम वाइट एशियन जीज कैन ब्यूटी शो में आप हमारे साथ साथ हैं। जनाब लास्ट लिंक है तो आप लोगों को वेलकम के साथ साथ ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो है ना आप लोगों को जीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। तो जीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती किस तरह से बढ़ेगी और किस तरह से आप अपनी खूबसूरती को लॉक कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोग इसी बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते तो हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमारी स्किन यानी कि उनको पता नहीं होता कि उनकी स्किन सेंसिटिव है। तो अगर आपकी स्किन भी कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो खराब हो जाती है तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये मेरी केयर फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे बनाया गया है। और सबसे बेहतरीन बात की क्रीम के पैकेजिंग के ऊपर ही आप लोगों को डॉक्टर का फोटो मिलेगा जिससे ये चीज साबित हो जाती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इस तरह का केमिकल नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, आप लोगों के चेहरे पर जो है ना कोई भी इस तरह की चीज छोड़े जो आप लोग देखें तो परेशान हो जाए बल्कि आप लोगों के चेहरे पर जितने मसाले वो सारे दूर हो जाते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बी और माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, सिर्फ आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने के साथ साथ ही इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई अब आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो आप ये दोनों चीजें साथ में लगाइए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आपने डायल करना है 03157990595 बुरी 315 79 95

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी हैप्पी गर्ल, कहती है अस्सलाम वालेकुम सुरजानी। वालेकुम अस्सलाम हैप्पी गर्ल, कहती हैं सुरजानी ठीक हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपके नसीब अच्छे करे। थैंक यू जाना, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला महर मीरपुर खासी में सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन जी। इरम कहती है लव यू सो मच मुझे प्यारी दिलबर दोस्त। क्या नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह, और आप इस चीज की टेंशन ना लें। और ये हमारे साथ हैं दुनिया जी ना ही परवाह सिस्टर तूने खेर हो जे। हाजी एन हमारे साथ हैं, आप कैसी हैं सरदार हाजी एन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी आ गए हैं इस प्यारी सी महफिल में, खुश आमदीद वेलकम।

ఒకటి రసూలా బాసి అబ్దుల్ సిన్ శంబాని భాయి వాలేకుమ్ అస్సలాం టాపిక్ అది चलें बहुत शुक्रिया खुश रहे और हैप्पी गर्ल के रिसीडो जानी शो हमेशा की तरह आपका गुड है और कहती हैं कि दिल से प्यार किया है दिल से निभाएंगे जब तक जिंदा है सिडो जानी तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहेंगे क्या बात है बहुत शुक्रिया जी और अब्बास महर हमारे साथ हैं अब्बास आपको खुश आमदीद कहा जाता है हैप्पी गर्ल कहती हैं इतने सारे हैप्पी गर्ल आपने मैसेजेस कर दी पूरा पैनल मेरा भर दिया है आपने और कहती हैं सिडो जानी मैं मेरी अम्मी मेरी सिस्टर अलीजे और बुआ सब आपका शो सुन रही है सभी को दिल से वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग रिक्वेस्ट चलें चाचा मुझे आपका कोई गाना तो अभी तक नजर नहीं आया कि आपने कौन सा गाना बोला है लेकिन चलें लगाने की कोशिश करेंगे नहीं तो पांच बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे और ये हमारे साथ हैं जी नाजिश फ्रॉम लाड़काना कहती है अस्सलाम वालेकुम आप ही आप कैसी हैं आप ही व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव सुबह से मैं बहुत अपसेट थी अब आपकी आवाज सुनी है तो स्माइल करने लगी हूँ नाजिश बहुत थैंक यू आपका मेरी जान ऐसे ही खुश रहे वैसे ऐसा है कि मैंने दो तीन कॉमेंट भी लोगों के ऐसे देखे या आप भी कह रही हैं कि सुबह से आप थोड़ा अपसेट थी ऐसा है कि ये कुछ दिनों से थोड़ा जो है ना वो मूड वाकई अपसेट सा फील हो रहा है उदासी उदासी शायद ये सिर्फ आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ऐसा सीन है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड जो है वो सही नहीं है मतलब जैसे सही वाला सही होता है ना वो वाला नहीं है बस नॉर्मल सा है अब पता चल रहा है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं तकरीबन सब लोगों के साथ ये मसला चल रहा है कोई बात नहीं जी और साथ साथ हैं जी ऐसे शो खालिद आलम खान मोहम्मद खान हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच सर आप हमारे साथ हैं मुन्नवर मुगल के दी सॉन्ग रुलते गए पर चस बड़ी आइए अभी फेसबुक पर लाइव की लिंक बता दीजिए फेसबुक पर ऐसा करें आप फेसबुक पर जब सर्च बॉक्स होता है ना जो उसमें आप सर्च करेंगे जीए लाड़काना एफएम 88.8 ठीक है तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाता है पेज को आपने फॉलो कर लेना है और फॉलो के बाद आप जो है ना जब जब हमारा शो आएगा तब तब आपको हमारे शो है ना उसकी पोस्ट और नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेगी तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए पेज ही जी लाड़काना एफएम 88

ओके जी मुनव्वर भाई आपका बहुत शुक्रिया. इरम कहती यार ना बिल्कुल यही बात है. और ये हमारे साथ मुलायम इस्लामद सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी सखर मेरे अंसर. दोनों सूरतों में मोबाइल बेकार है. आपके शो का इंतजार होता है ओ सुनने के लिए FM 88 रेडियो मैम. थैंक यू सो मच जी, आप हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं. बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का. और ऐसे ही बस आप जो है वो मोहब्बतें करते रहें तो हम आप लोगों के लिए आते रहेंगे. यहाँ पर हमारे पास ये गाने रहते हैं कुछ, तो हम साथ साथ गाने भी सुनते रहेंगे. ये गाना है जिसकी फरमाइश में मोहम्मद जमान भाई जाने कर दी थी, तो सुन

ओके जी, सो गाना सुन रहे हैं और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। अच्छा, उदास लड़की कहती है कि हम लाड़काना में रहकर भी बुरा लाड़काना नहीं घूमे और चले हैं भाई तुर्की घूमने, देख लें भाई। अच्छा, अली मुर्तजा कहते हैं कि ये सीन कई बार हुआ है मेरे साथ में, मोबाइल चार्ज करने के मामले में थोड़ा लेजी हूँ, पैकेज ऑलवेज बट चार्जिंग ऑलवेज डाउन, जब भी ऐसा होता है तो मैं सो जाता हूँ, नींद अच्छी आती है। वैसे ये चीज मैंने नोटिस करी है कि मर्द हजरात होते ना वो थोड़ा इस मामले में पीछे होते हैं मोबाइल चार्ज करने में, ये चीज मैंने वाकई देखी है। और लड़कियां भी आगे होती हैं, उनको बस हर वक्त अपना फोन फुल चार्ज चाहिए, मैं तो ऐसी हूँ बेटी, और मुझे लगता है सारी लड़कियां ऐसी होंगी, उनको फुल मोबाइल चार्ज चाहिए और लड़के वाली बिल्कुल उबिता। वो 1% के ऊपर भी घंटे जो है ना वो मोबाइल चला सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोबाइल चार्ज है या नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ बिल्कुल ये उलट वाला सीन है, और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए। अंसारी हमारे साथ ही, अंसारी वालेकुम असलम प्यारी बहन, और कहते हैं गुड आफ्टरनून, आई एम काशिफ फ्रॉम कराची, काशिफ आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हेन जी हमारे साथ, रुखसार मरी आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिलाल कहते हैं ये जो हम इतने प्यारे होते जा रहे हैं ये सारा इसका, अरे डी स्किन का कसूर नहीं बोले, कमाल बोले। ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। अखलाक भाई कहते हैं कि सदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से उम्र भी बढ़ती है क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है, लगा कर देखिएगा आप। ओके, सालार खान हमारे साथ, सालार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, हाली सुल्तान हमारे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम।

वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां इंजॉय कयो पिया प्रोग्राम में. बाक़ी असां वटि थोरो वञी टाइम बचियो आहे तव्हांजो असांजो साथ. और बिलाल अली कहते एक दिन फलको सबर मिल जाएगा और मैं मीठा हो जाऊंगा. सही है भाई. अच्छा हारे सुल्तान कहते हम लोग भी आपका शो सुन रहे हैं विद फैमिली. थैंक यू सो मच. आपकी सारी फैमिली को खुशामदीद कहा जाता है. आमिर अली हमारे साथ हैं. थैंक यू. अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं. अरे भाई चांद जी सलाह कयो. अच्छा ए मंसारी कहते हैं हम गर्मियों के इतने आदि हो गए हैं कि जब मैं नारायण कागान में गया था वहाँ का मौसम देखकर मैंने एक शो वाले से कहा था कि जिंदगी तुम लोगों की है. हम तो हाँ भाई हम वाकई ऐसा ही है. जिंदगी उन लोगों की है. मैं भी ये सोचती हूँ. खैर हम जो है ना अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को इस तरह पैदा किया है कि वो हर एक मौसम में जो ना वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो हम कितनी गर्मियाँ हो हम जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो शुक्र अदा किया करें. और उसके अलावा जो है और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाया करें. और किशोर भाई कहते हैं अदा गानो अज मुं महेश भाई के डेडिकेट कयो आ जंहिंजे घर असां वेठा आहियूं. इज़त रख जो बिल्कुल ही त हाणे पढ़ियो पर महेश भाई जे लाइ असां ही गानो हलाए छॾियो आहे. महेश भाउ अदा जी ख़िदमत कजो. चांहि बाहि पीआरियोसीं. गाने में चए थो चांद जी सलाह करियो. सो बिल्कुल हुआ चांद जी सलाह कजोसि. ऐं ॿियो छा ॿियो कुझु बि न. ओके सो टाइम सफ़ा ख़तम थी विया. एसन छा थो चई बस एसन अॼु माण्हुनि जूं फरमाइशूं लॻायूं आहिनि मूं. अच्छा आशिक खास के लिए भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी. और सुहेल मुगल हमारे साथ है. मुनव्वर मुगल अच्छा मुनव्वर भाई आप हमारे साथ है बहुत शुक्रिया जी. और इसी के साथ अमान मियो भी हमारे साथ हैं जी. थैंक यू सारे लोगों का बहुत शुक्रिया. मिलते हैं आप लोगों से वरी इंशाल्लाह 5 बजे वाले प्रोग्राम में. अगर ये सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहें. जिनके फीडबैक रह चुके हैं जिनके गाने रह चुके हैं सभी से माजरत करते हैं. सो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और साथ साथ खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए. मोकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: वधंदड़ आबादी मुल्क लाइ वॾो चैलेंज आहे। मुल्की तरक़ी ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादीअ जो मुनासिब हुजणु ज़रूरी आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त वधंदड़ आबादी ऐं मौसमियाती चैलेंजेस खे वक़्त सिर क़ाबू करणु ज़रूरी आहे। मुल्क जे वधंदड़ आबादी वसीलनि ऐं मौशियत ते बार बणजी रही आहे।
1: वफ़ाक़ी आईनी अदालत SPS ख़िलाफ़ जांच जो हुकम मुअत्तल करे छॾियो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उमेदवारनि जा इंटरव्यूज़ रोकण बाबति सिंध हाई कोर्ट जो बि हुकम मुअत्तल। फेल थियल उमेदवारनि जा पेपर्स ॿीहर चेक करण वारो बि हुकम मुअत्तल। आईनी अदालत सिंध पेपर सर्विस कमीशन जी अपील ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस बाकर डजफी रिमार्क्स ॾींदे चयो त सिंध हाई कोर्ट अबूरी में हुकुमनामे में रिलीफ ॾेई छॾियो आहे।
0: कराची में फुर मज़हमत ते क़त्ल कयल डॉक्टर केस में अहम अकबराई टे जवाबदार गिरफ़्तार। गिरफ़्तार जवाबदारनि में हिकु उस्ताद बि शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे DIG साहू चयो आहे त सेफ सिटी कैमराउनि मदद सां जवाबदारनि ताईं पहुता आहियूं। ॾोह लाइ ॿिनि मोटरसाइकिल ऐं हिकु कार खे इस्तेमाल कयो वियो। टिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। टिनी जो कम्यूनिटी सां आहे। ॾोह लाइ इस्तेमाल थियल हथियार हथ कया आहिनि। फुर कयल रक़म बि मिली आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
5: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
4: इहा वाकई फायदे वारी आहे।
5: कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
5: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज़ हर कदम। अॼी वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: छा तवा जो ख्वाब आए तो मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बन जो छा तवा मयारी तिबी तालीम सा पैजे कैरियर के नई ऊंचाई ताई पहुंचाएं चाहो था तो पोई खुशखबरी आहे आ जेलाए हाणी सखर में सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डीपीटी प्रोग्राम में दाखिला जारी आहिन जेको लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस ज्ञाम शोरो लम्स सा इलाक चला है इते तवांगे मिलंदी जदीद तिबी तालीम तजुर्बेकार ए काबिल फैकल्टी जदीद लेबोरेटरीज ए एक महफूज बेहतरीन तालीमी माहौल ए सबखा वडी खुशखबरी सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस ए फी सेमेस्टर सिर्फ 17,000 रुपया हाने मयारी तालीम हर शागिर्द जी पहुंच में महदूद सीट्स मौजूद आहिन तें करे पंहिंजे रोशन मुस्तकबिल लाइ अॼी कदम वधायो ऐं हा फिजियोथेरेपी ओपीडी जी बेहतरीन सहूलियत पिण मौजूद आहे एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 071-5635-642 ऐं 0300-8311-207 छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
1: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
0: सखर शिकारपुर रोड ते
1: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
0: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
1: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मंसूबो
0: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
1: रिहाइशी प्लॉट्स